सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर 2.5 घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छूटी, साला किस्मत पटरी पर आ गई।

0: कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं।
1: Less hustle, more yaadein. That's how weekends should be. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Kenda. The biggest Bollywood hits non-stop. The part of the Big Weekender. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसलखोर, अलकूज, अलगिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The songs that raised us, the stories that stayed with us. Your weekend throwback begins now. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Millennials Unite! Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Scraps, MSN chats and Bollywood bangers. It's your audio time machine. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसलखोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Stars, the part of the big weekender. Big 106.2, the beat of Bollywood.

बिग मिलेनियल वीकेंडर, मैं हूँ शिरिन ऑन बिग 106.2। येट अनदर सैटरडे, येट अनदर अमेजिंग मॉर्निंग। और आज भी मैं कुछ चीज़ें जो है आपके साथ डिस्कस करूँगी। आज जो डिस्कस करूँगी, देखिए, हमेशा जब जॉनर ऑफ मूवीज़ की बात आती है तो मुझे जो सबसे सबसे प्रिय मेरे हृदय के पास जो है वो है हॉरर मूवीज़। आई रियली एन्जॉय वॉचिंग हॉरर मूवीज़। ऐसा नहीं है कि हॉरर मूवीज़ देख के मुझे डर नहीं लगता है, मैं देखती हूँ और फिर डरती भी हूँ। फिर एक रूम से दूसरे रूम तक जाने के लिए सारे लाइट घर के ऑन रखती हूँ, रात को भी जो है लाइट ऑन करके सोती हूँ। ये सब कुछ होता है, लेकिन आई लव वॉचिंग हॉरर मूवीज़। वो जो थ्रिल आता है ना, मतलब मन में, आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। तो इफ़ यू नो, आपको भी ऐसा लगता है कि हॉरर मूवीज़ के सजेशंस बॉलीवुड से बहुत कम मिलते हैं, तो मैं हूं ना यहां पर आपको बताऊंगी, आपको सजेस्ट करूंगी कुछ हॉरर मूवीज जो कि मिलेनियल टाइम्स में बनी थी, लेकिन आज भी अगर आप देखोगे ना, आपको पक्का डर लगेगा। तो कुछ मूवी सजेशन के साथ मैं आज यहां पर आई हूं। लेट्स गो एंड लिसन टू द फर्स्ट सॉन्ग एंड देन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ऑल द सजेशंस दैट आई हैव।

द बिग मिलेनियल वीकेंडर, मैं हूँ शिरिन बिग 106.2 पर। और अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो मैं हूँ ना यहाँ पर आपको बताऊंगी कौन सी मूवीज आपको देखनी चाहिए। बॉलीवुड जो है हॉरर मूवीज के नाम पे थोड़ा सा बदनाम जरूर है, लेकिन कुछ मूवीज हैं जो देख के मजा आएगा, डर लगेगा और जो थ्रिल चाहिए वो मिलेगा। तो मेरा पहला सजेशन होगा 100 डेज। 100 डेज एक ऐसी मूवी है जो कि इट टॉक्स अबाउट यू नो व्हेन यू आर स्लीपिंग यू हैव अ ड्रीम एंड यू थिंक ऑफ आई मीन यू ड्रीम ऑफ थिंग्स Which have not yet happened. जी हाँ, ऐसे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये मूवी 100 डेज। एंड ऑब्वियसली इस कॉन्सेप्ट में मूवीज और भी बनी हैं, बट दिस वॉज रियली वेल मेड। ऑफकोर्स आपको समझना पड़ेगा कि ये मूवी मिलेनियल टाइम्स में बनी है, तो जो चीज़ें जो ड्रीम्स वगैरह दिख रही हैं वो थोड़ा सा लाइक आज का जो है मेकिंग उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, बट इट्स रियली रियली वेल मेड और थोड़ा सा डर तो पक्का लगेगा। 100 डेज बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, देखिए और बताइए मुझे कि आपको पसंद आई कि नहीं। बिग के इंस्टा पेज पे 106.2 बिग FM और जो है मेरा इंस्टा पेज हसला_शिरिन। लेट्स गो एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग।

The Big Millennial Weekender, this is me Shirin on Big 106.2. तो अगली जो हॉरर मूवी सजेशन मेरी तरफ से आपको मिलेगा वो है रात. My God, रात में जो है रेवती इज द मेन कैरेक्टर इन द मूवी एंड शी गेट्स पोजेस्ड. बेसिकली यही होता है, लेकिन द वे शी हैज एक्टेड आउट इन दैट मूवी, आई मीन यू कैन इमेजिन, राम गोपाल वर्मा की मूवी है ये और ऑब्वियसली तो ही नोज हाउ टू ट्रीट अ हॉरर मूवी. तो इट्स ट्रीटेड रियली वेल, द एक्टर्स आर फैबुलस, द वे यू नो शी गेट्स पोजेस्ड एंड देन शी कम्स आउट ऑफ इट. ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं बिकॉज इट्स अ फ्लिप ऑफ एक्सप्रेशन. और वो जो फ्लिप ऑफ एक्सप्रेशन है वो अगर बराबर से नहीं किया जाए तो यू नो यू रियली डोंट गेट द किक ऑफ इट. बट द वे शी डज इट, रेवती, फॉर रेवती मैम यू मस्ट डेफिनेटली वॉच दिस मूवी. रेवती हैज ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी टॉक्ड अबाउट एंड वेरी वेल नोन एक्ट्रेस इन द साउथ एंड नॉर्थ में भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज इन्होंने की हैं. जैसे कि आप जानते हैं वो गाना साथिया तूने क्या किया, ऑब्वियसली वो मूवी इस मूवी का गाना नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर यू टू नो हु इज रेवती. अगर रात आपने देखी नहीं है प्लीज गो and watch it over this weekend. It would be a great watch. So let's go and listen to the next song.

0: बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: Y2K hits, indie gems, Bollywood gold, your kind of playlist. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big. Big 106.2.

मिलेनियल वीकेंडर, दिस इज मी शिरन ऑन बिग 106.2। तो हॉरर मूवीज कुछ सजेशंस जो मैंने दी हैं, डेफिनेटली वॉच दोज। एंड अभी जो सजेशन मैं देने वाली हूँ, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस माइट हैव वॉच दिस मूवी, विच इज भूत। नाम में ही भूत है। राम गोपाल वर्मा ने इस मूवी को बनाई है, उन्हीं को पता है कि भूतों की मूवी कैसे बनाई जाती है। तो इस मूवी में ऑफकोर्स उर्मिला मातोंडकर हैज really hit out of the park. Ajay Devgan is amazing acting. तो मुझे लगता है कि फरदीन खान की भी है, जो कि normally acting के ना मामले में जो है उनका नाम इतना ज़्यादा नहीं है, but in इस movie में he is really done a nice job. इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं, it's just you know those minute expressions that you need, जो कि उन्होंने दिए हैं. So Bhoot is a fantastic movie, and I must tell you कि जब ये movie release हुई थी, तब लोगों का कहना था कि किसी ने theater में बैठ के इस movie को देखा and that person had a heart attack. I mean इतनी डरावनी भी नहीं लगी थी मुझे, but आप बताइए आपको कैसी लगी. Hit me up on my insta page hustla_shirin and on the insta page of big 106.2. आप लोग हमें बताइए कैसी लगी. So let's go ahead and listen to the next song.

The Big Millennial Weekender, this is me, Shirin, on Big 106.2. तो अब जो मैं अपनी लिस्ट को देख रही हूँ, ये जो हॉरर मूवीज की लिस्ट है, मुझे लगता है ज्यादातर मूवीज राम गोपाल वर्मा की आ रही हैं, बट आई मस्ट से ही वॉज डेफिनेटली अ लेजेंडरी मूवी मेकर. तो अगला जो मूवी मेरा सजेशन होगा वो होगा डरना मना है. डरना मना है इज लाइक इट्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ 5 डिफरेंट स्टोरीज, और उसमें हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ हॉरर एलिमेंट होता है. एंड इसमें जो है हर एक स्टोरी के बारे में अगर मैं बताने जाऊंगी, इट्स गोइंग टू बी लाइक ऑलमोस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द एंटायर, यू नो, एंटायर मूवी. तो इससे अच्छा है कि आप लोग जाइए और आप बताइए कि आपको कौन सा वाला सबसे स्कैरी लगा. मेरे हिसाब से मुझे सबसे स्कैरी जो विवेक ओबेरॉय वाला पार्ट था, जिसमें वी रियली गेट अ बिग शॉक, ओ माय गॉड, व्हाट जस्ट हैपेंड. ये चीज आपको हर स्टोरी में दिखेगा, लेकिन विवेक ओबेरॉय वाला जो स्टोरी है उसमें मुझे सबसे बड़ा शॉक लगा था. एंड यू मस्ट डेफिनेटली वॉच डरना मना है एंड टेल मी कि विच आउट ऑफ द 5 स्टोरीज यू लाइक द बेस्ट एंड विच वॉज द मोस्ट स्कैरी वन. चलिए जाते हैं और अगला गाना सुनते हैं.

0: Canada.
1: All about the hits.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
0: Millennials unite! Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

The Big Millennial Weekender, this is me Shirin on Big 106.2. Horror movies की suggestions मैं आप लोगों को दे रही थी और अगला जो suggestion मेरा है वो है 13B. जी हाँ, 13B movie को जो है हिंदी में बनाया गया था, of course इसको तमिल में भी बनाया गया था दूसरे title के साथ. इसमें माधवन ने main role किया है और इस movie का जो horror जो concept है वो completely different है. इसमें आप देखेंगे कि एक घर है, एक घर के अंदर जो है भाई है, बहन है, पापा मम्मी सब हैं. वही वाला घर जो है टीवी के अंदर भी है. यस, दैट्स व्हाट हैपेंस. और फिर जो टीवी में चलता है वही इनकी लाइफ में भी चलता है. दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस. एंड देन माधवन को समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस सीरियल में जो चल रहा है ये क्यों हमारे घर पे चल रहा है. एंड देन हाउ डज ही अनकवर थिंग्स इन दैट, हाउ डज द स्टोरी रियली कम आउट, दैट इज व्हाट दिस मूवी इज ऑल अबाउट. एंड ये मूवी अगर आप लोगों ने देखी नहीं है, ऑल्दो इट वॉज नॉट अ ग्रेट हिट, बट इट वॉज अ डेफिनेटली वर्थ वॉच मूवी. अगर देखी नहीं है please go and watch 13B. So you can DM us on 106.2 Big FM and you can also DM me on Hustler_Shirin. This is towards the end of the show. So agle Saturday ko fir milenge. Aap log hamesha ki tarah keep smiling and keep shining.

106.2 The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: क्या बात है यार,
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है
0: भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: A brand new one suddenly viral फिर से हो गया ये social media पे on number 39 this week. इसी के साथ talking about इंडिपेंडेंट गाने, ये गाना तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ताड़ चुका है. When I talk about independent songs, this is अनुव जैन की आवाज.
1: इश्क में तेरे हैं फैज बने.
0: From Coke Studio Bharat on number 38.
2: Number 40.

0: One of the most viral songs from Coke Studio Bharat. We've got Anup Jain ki awaaz, who's very popular amongst the Gen Zs. This week on number 38, playing you the top 40 biggest hits of the week. Ye hai Big Bollywood Countdown. Main hoon Mansi. Arz kiya hai, even after almost a year, still a very viral gana. And ye Coke Studio Bharat ke liye Anup Jain ne compose kiya tha in collaboration with Lost Stories. And millions of downloads hain is gaane ke. Aisa ye ek aur gana is hafte in the top 40. Thanks to social media, bohat hi viral hai. Even after months and years of release, a lot of celebrities also recreated a lot of content on this very song. But usse pehle, is hafte bhi number 37 pe Shanaya Kapoor, Gaurav Adarsh. Moving on to number 36, we've got a fantastic Haryanvi gana jo itna viral ho jayega thanks to TikTok and Instagram. In fact, it has been dominating social media for almost a year now. We've got Mit Arora with this one on number 36. लिखा और कॉम्पोज भी मित अरोड़ ने किया है एंड साथ में गाया है स्वरा वर्मा ने. थैंक्स टू सोशल मीडिया, स्टिल वेरी पॉपुलर एंड वेरी रेलेवेंट ऑन नंबर 36.
1: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड, बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग जियो.
2: ऑल माय फेवरेट म्यूजिक इन वन स्पॉट.
1: वीकडेज 9 PM टू 12 AM on Big 106.2, brought to you by insurancemarket.ae.
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने.
4: दो या चार?
3: चार.
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में.
4: चार या
3: पांच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन. OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा. द बिग बिंज विद सिड. प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ.
1: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM टू 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, Big 106.2, the beat of Bollywood, number 37.

पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला के छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: बाय द मॉन्डल ब्रदर्स इतना वायरल हुआ कि रिक्रिएट किया गया है बादशाह ऑफ कोर्स द वन हु फाइंड्स दीज वेरी वेरी कूल लोकल आर्टिस्ट एंड गिव्स देम अ प्लेटफॉर्म बाय रिक्रिएटिंग देयर ओन सॉन्ग्स On number 35 from Pati Patni aur Wo Do, जो मुझे बहुत अच्छी लगी. It is such a fun movie. I mean, इसे कब से हम entertainment में logic ढूंढने लगे. It's pure comedy. It's pure fun. So yeah, if over the weekend you want to watch something light, something entertaining, it has to be Pati Patni aur Wo Do. Especially Vamika Gabbi and Ayushman Khurana, they are brilliant also. Tigmanshu Dhulia, मजा आ जाएगा आपको. तो 100% मैं recommend करती हूँ. A nice फील गुड मूवी. हम उस जमाने से हैं जिन्होंने हेरा फेरी अंदाज अपना अपना 20-20 बारी देखी है. तो रिव्यूज पे मत जाओ. द मूवी इज फैंटास्टिक दिस वीक ऑन नंबर 35. मूविंग ऑन, प्लेइंग इन द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक. ये है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. मैं हूं मानसी ऑन नंबर 34. We've got विशाल मिश्रा. एक साल हो गया है सैयारा को, फिर भी गाने आज भी सुपर डुपर हिट एंड पार्ट ऑफ टॉप 40. इसी के साथ फ्रॉम मेट्रो इन द नो ऑन 33.
1: दिल जला के
0: बड़ा अंडररेटेड एल्बम है ये.
1: मुस्कुराने की जो आदत हुई.
0: सी, लाइफ इन अ मेट्रो हैड ब्रिलियंट म्यूजिक एंड सो डिड मेट्रो इन द नो. अरिजीत सिंह की आवाज साथ में अमिताभ भट्टाचार्य दिस वीक ऑन 33.
2: This is the Big Bollywood Countdown.
3: All the music I love.
2: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 34.

दो गाने रिलीज हुए हैं फ्रॉम टॉक्सिक एंड आई हैव टू से वेरी कबीर सिंह फील्स एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ 2026. Playing you the top 40 biggest hits of the week. Mansi, hope you're enjoying your weekend right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. People are saying the only movie that might break Dhurandhar the franchisee ke records is Yash ki Toxic. Ab maine KGF nahi dekhi hai, to mujhe honestly nahi pata tha ki Yash is such a big star. I saw the first song and like everyone, I started googling Yash ke kaun hai ye good looking ladka jise main nahi janti. So yeah, I read about him and he's a massive star. The movie is anticipated as one of the biggest release of 2026. Massive budget, 1,000 crore ka budget jo hai is movie ka tha, and it is hitting the theaters on the 26th of August. मूवी को डायरेक्ट करा है गीतू मोहनदास ने, स्टारिंग रॉकिंग स्टार यश, हु इज प्लेइंग राया इन द मूवी. देर इज तारा सुतारिया, देर इज कियारा अडवाणी, हुमा कुरेशी, नयनतारा, तो काफी कमाल स्टार कास्ट है. कांट वेट फॉर दिस वन. फिलहाल मूविंग ऑन नंबर 30 वी हैव गॉट विशाल भारद्वाज मधुबंती बागची विद From Oh Romeo. इसी के साथ number 29 again, a movie that is getting a lot of good reviews from Baby Do Die Do. लीजो जॉर्ज ने रिक्रिएट करा है ओरिजिनल गाना, अनु मलिक का कंपोज किया हुआ अलका याग्निक की आवाज. राइट हियर प्लेइंग द टॉप 40 हिट्स ऑफ द वीक. स्टे विद मी, आई एम मानसी. दिस इज बिग 106.2. नंबर 30.

0: नंबर 29।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

प्लेइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर 21 पर इस हफ्ते भी धुरंधर से ओनली शाश्वत सचदेव कैन टर्न अ कवाली इनटू समथिंग लाइक दिस. Playing in the top 40 biggest hits of the week, यह है Big Bollywood Countdown. मैं हूँ मानसी, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. Moving on to गाना नंबर 20 from a movie that I so wanted to watch in the theaters. But good news यह है कि Netflix ने officially rights acquire करे हैं इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा के, and it's streaming worldwide next week on the 7th of August. लोग कह रहे हैं कि नसीर साहब की ये one of the best performances है, and साथ में दिलजीत, वेदांग रैना, शर्वरी. Can't wait. This is इम्तियाज second mega hit collaboration with Diljit Dosanjh, and of course A.R. Rahman ka music hai, brilliant music, and of course this movie was highly praised by critics and audiences, currently holding on a 8.5 out of 10 rating on IMDb. Is hafte from Main Wapas Aaunga number 20 par.

0: इंडिपेंडेंट गाना जिसने सोशल मीडिया पे फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इन फैक्ट स्टिल तहलका मचाया हुआ है।
1: हमने सांब सांब रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल रो रो ये बिछोरी बाल से होरे।
0: We've got Varun this week on number 19 playing in the top 40 biggest hits of the week. ये है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन।
2: This is the big Bollywood countdown.
3: All the music I love.
2: The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: A circuit. अपने कार के एसी की वाट लग गई। एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा? बता ना।
5: टेंशन नहीं लेने का भाई। अलरास है ना?
4: अलरास बोले तो?
5: बोले तो। मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन। हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
4: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
2: The Big Bollywood Countdown, the part of the Big Weekend, Big 106.2, the beat of Bollywood, number 20.

ब्रांड न्यू एंट्री रेखा भरद्वाज की आवाज फ्रॉम मुसाफिर कैफे ओवर द वीकेंड. इफ यू वांट टू वॉच समथिंग गुड देन आई हाईली रिकमेंड यू वॉच द शो विक्रांत मासी. आई थिंक ही इज ब्लेस्ड. एंड अगर आपका भी दिल कभी टूटा है, आपने प्यार में किसी का इंतजार किया है, यू हैव टू वॉच दिस शो. इनफैक्ट अगर आपने भी मेरी तरह सोचा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों पे एक कैफे खोलते हैं, दिस शो इज फॉर यू. इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट शो. कहानी है चंदर मोहन शर्मा की, प्लेड बाय विक्रांत मसी, जो एक इंजीनियर हैं, बट उनके ड्रीम्स कुछ और हैं. उनकी लाइफ एक ड्रास्टिक टर्न लेती है व्हेन ही मीट्स सुधा, जो इंडिपेंडेंट डिवोर्स लॉयर है. एंड डिस्पाइट देयर कंप्लीटली ऑपोजिंग व्यूज ऑन कमिटमेंट एंड मैरिज, द टू फॉल इनटू एन इंटेंस passionate love affair that eventually breaks apart because of their conflicting priorities. Main aapko spoilers nahi dungi. It's a beautiful, beautiful show. And over the weekend, if you have no plans, watch this show. Moving on to number 16, a song that is been very, very consistent. A.R. Rahman, Irshad Kamil. We've got this one from Tere Ishq Mein. इसी के साथ नंबर 15.

तीन पोजीशन डाउन पिछले हफ्ते ये गाना जो है नंबर 12 पे था, इस बार 15 पे आ चुका है फ्रॉम धुरंधर 2। नंबर 16।

0: 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
1: Playing in the top 40 biggest hits of the week. This is the Big Bollywood Countdown. Time for top 12. Number 12 pe naya gana seedha number 12 pe entry mari, and I think agle hafte tak ye hoga in the top 10. I'm talking about the high energy modern electronic remake of this cult classic. 90s ka item track Mujhko Rana Ji Maaf Karna, jo 1995 ki blockbuster movie Karan Arjun se hai. Ye gana 27 July ko release hua hai by Tips Music, and ओरिजिनल गाना भी टिप्स म्यूजिक का था. द ट्रैक फीचर्स टीवी पर्सनालिटी बिग बॉस कंटेस्टेंट माहिरा शर्मा. ओरिजिनल आवाजें जो इस गाने की हैं, दैट इज इला अरुण एंड अलका याग्निक की, प्रिजर्व की गई हैं इंस्टेड ऑफ री रिकॉर्डिंग देम, एंड इट्स रिक्रिएटेड बाय नन अदर दैन तनिष्क बागची, हु लेयर्ड द ओरिजिनल फोक इन्फ्यूज्ड playback vocals with contemporary electronic party beats. In fact, original gana jo hai wo compose kiya tha Rajesh Roshan ne, but recreate kiya hai Tanish Bagchi ne is hafte number 12 par. Reviews इस गाने के, millennials are not very happy because it's a cult. Mamta Kulkarni जो इस गाने में थी, she is very very happy that ये गाना recreate किया है. She also said कि माहिरा ने काफी अच्छा dance किया है. She's done a great job. इस हफ्ते on number 12, and of course, like I said, Bollywood's obsession when I talk about recreating songs. ओरिजिनल गाना माधुरी आमिर खान की दिल से रिक्रिएटेड फॉर धुरंधर 2.
0: नंबर 12.

On number 7, we've got Ucha Lamba Kad Forever from Welcome to the Jungle. Right here on Big 106.2, playing you the top 40 biggest hits of the week. Main hoon Mansi, ye hai Big Bollywood Countdown. Welcome to the Jungle, also known as Welcome 3. मैसिव मल्टी स्टारर बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी जिसे डायरेक्ट करा है अहमद खान ने, प्रोड्यूस किया है फिरोज नाडियाडवाला ने. दिस इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द पॉपुलर वेलकम फ्रेंचाइजी. मूवी ऑफिशियली रिलीज हुई थी ऑन द 26th of June एंड ग्रेट रिव्यूज कमिंग इन. रवीना टंडन, अक्षय कुमार मेकिंग अ कमबैक ऑन द स्क्रीन टुगेदर आफ्टर एजेस. इन फैक्ट नॉट अ स्पॉइलर बट दलेर मेहंदी का भी एक स्पेशल अपीयरेंस है इस मूवी में. सो या, बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज हैं, बट मैं कहती हूँ हमने ओरिजिनल वेलकम भी एंटरटेनमेंट के लिए देखी थी. अब 2026 में इफ यू स्टार्ट लुकिंग फॉर लॉजिक इन एंटरटेनमेंट एंड इन एंटरटेनर्स, इट विल नॉट मेक सेंस. गो एंड वॉच द मूवी फॉर द फील्स, फॉर द वाइब, फॉर द फन, एंड इट विल डिलीवर. इस हफ्ते ऑन नंबर 7, दैट वॉज वेलकम टू द जंगल से ऊंचा लंबा कद. मूविंग ऑन टू नंबर 6, वी हैव गॉट अगेन शाश्वत सचदेव एंड खान साहब.

0: नंबर 5 पे रॉक स्टार यश एंड साथ में कियारा डुआनी. द सॉन्ग इज गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन ऑन सोशल्स बिकॉज ऑफ द वीडियो, बट आई हैव टू से इट्स अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट सॉन्ग. द हिंदी वर्जन गाया है विशाल मिश्रा ने. One of the most anticipated movies of 2026 कह रहे हैं कि धुरंधर का रिकॉर्ड अगर कोई मूवी तोड़ सकती है वो होगी यश की टॉक्सिक. रिलीजिंग दिस ऑगस्ट, इस हफ्ते ऑन नंबर 5.
1: दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन.
2: ऑल द म्यूजिक आई लव.
1: द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड. बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड. Great news, Ajman! A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop. The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 6.

नंबर वन से नंबर टू और इस हफ्ते सीधा नंबर तीन पर धुरंधर टू से आरी आरी, which is such nostalgia for us millennials, Bombay Rockers का आरी आरी that we used to listen to on loop अपने MP3 players में is back thanks to Dharander 2 and Shashwat Sachdev. इस हफ्ते number 3 पर मैंने कहा ना number 1 से number 2 पे आया. This week on number 3 playing you the top 40 biggest hits of the week. ये है Big Bollywood Countdown. मैं हूँ Mansi and number 1 consistently दो हफ्ते रहा है ये गाना from Cocktail 2, but this week गाना पहुंच चुका है number 2 पर. We've got Mashuka from Cocktail 2.

इनफैक्ट जो गाना नंबर वन पे है, जब ये रिलीज हुआ था तो बहुत ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया पे, ऑडियंस ने बहुत क्रिटिसाइज किया था इस रीमेक को, बिकॉज ओरिजिनल गाना जो है वो अनबीटेबल है. इनफैक्ट ओरिजिनल गाने में सलमान खान भी थे, एंड रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने मस्ती में कहा कि वरुण धवन जो है वो कॉन्स्टेंटली मेरे पुराने हिट गाने रिक्रिएट करता है. बट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ट्रोलिंग दे से राइट एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, एंड वरुण धवन व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम अबाउट दिस सॉन्ग ही सेड दिस इज नॉट फॉर मिलेनियल्स, दिस सॉन्ग इज कंप्लीटली रिक्रिएटेड फॉर जेन ज़ीज. Gen Z's are loving the gana. The vibe is hafte number one pe from hai Javani to Ishq Hona Hai. Chunari Chunari 2.0. Right here playing you the top 40 biggest hits of the week. Main hoon Mansi. Main aapse milti hoon ab agle hafte with the top 40 hits. But weekdays pe I meet you 5 se 9 with the big thrill. Until then, do not forget to follow us on socials. 106.2 Big FM it is. You can say hi to me, I'm Mansi talking. Have a great weekend. Stay right here. Number 40.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना
2: क्या कर सकता हूँ।
3: लेस स्क्रॉलिंग मोर स्ट्रीमिंग लेट्स सिड टेक कंट्रोल ऑफ योर वीकेंड वॉच लिस्ट। This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of

0: बिग 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज, वो शो जो वीकेंड का आपका हार्ड अर्न टाइम बचाता है। यार मतलब बड़ी मुश्किल से तो आपको वीकेंड मिलता है, दो दिन मिलते हैं, पांच दिन काम करने के बाद हाँ उसको इस काम में थोड़ी वेस्ट कर दोगे कि क्या देखें क्या नहीं, इसी सोच मोच में आप वेस्ट कर दो। नहीं, आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन। आई वॉन्ट टू सेव यू सम सीरियस टाइम एंड टेल यू कि क्या देखें क्या ना देखें। वी फोकस ऑन OTTs एंड देयर कॉन्टेंट, यानी कि इट कुड बी OTT शोज, कुड बी OTT फिल्म्स। आज हम बात करने वाले हैं About the show that everybody is talking about, Vikrant Masi starrer Musafir Cafe on Netflix. क्या अच्छी बातें हैं क्या बुरी बातें हैं, कितनी अच्छी कितनी बुरी, और इसको finally stream करें या skip करें। All that coming up right here on the Big Binge with me, Sid.
1: No

0: You're listening to The Big Binge with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Stop searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on The Big Binge. Big 106.2, The Beat of Bollywood.

Big 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज एंड वी टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स मुसाफिर कैफे द शो दैट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट एंड या इट स्टार्स विक्रांत मसी लाइक यू नो वेदिका पिंटो एंड महिमा मकवाना साथ में आदिल हुसैन है राजीव सिद्धार्थ एंड और भी सपोर्टिंग कास्ट के मेंबर्स हैं वेरी गुड सपोर्टिंग कास्ट बाय द वे स्टोरी फॉलो करती है चंदर को इट्स प्लेड बाय विक्रांत मसी जिसकी लाइफ ना इट गेट्स पुल्ड बिटवीन टू वेरी डिफरेंट इमोशनल वर्ल्ड्स एक तरफ है सुधा The intense, almost love from his past, and दूसरी तरफ है प्रीति, the steady partner जो उसके present में. It's set between Bhopal and Mussoorie, relationships, second chances, and a hill cafe dream. ये जो show है ना, it's arrived with a decent pre-release curiosity also because एक तो ये दिव्या प्रकाश दुबे की popular novel पे based है, और दूसरा क्योंकि विक्रांत मसी जब भी कोई शो करते हैं कुछ काम करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि यार विक्रांत मसी ने हाँ करी है तो अब तो भाई शो अच्छा होगा ही राइट ही इज दैट एक्टर हु रियली मेक्स सम वेरी गुड स्क्रिप्ट चॉइसेस सो हाँ यू कैन एक्सपेक्ट लव एक्सपेक्ट लॉन्गिंग्स माउंटेन्स अनरिजॉल्व फीलिंग्स एंड लॉट ऑफ वॉट इफ लाइफ हैड गॉन अनदर वे काइंड ऑफ एनर्जी इफ यू प्रिफर माउंटेन्स टू बीचेस दिस इज द शो दैट यू मस्ट वॉच राइट कमिंग अप नेक्स्ट What are the good things about Netflix's Musafir Cafe? Keep it locked. This is The Big Binge with me, Sid.

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गॉन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

We are talking about Musafir Cafe on the Big Binge. यार नेटफ्लिक्स का वो शो जो हर कोई बात करे इसके बारे में, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है, देखें कि ना देखें. आई एम सेविंग यू योर टाइम ऑन द वीकेंड. बेस्ट थिंग, ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द रियली गुड थिंग्स अबाउट मुसाफिर कैफे. हाँ, द बेस्ट थिंग अबाउट मुसाफिर कैफे बाय फार इज द शो का मूड. आई मीन इट्स नॉट ट्राइंग टू बी द थिंग्स दैट यूजुअली ओटीटी शोज दीज डेज ट्राई, राइट? लाउड, शॉकिंग, ट्विस्टी, ये कुछ ट्राई नहीं कर रहा है. इट्स अ सॉफ्ट स्लो बर्न रिलेशनशिप ड्रामा. विक्रांत मसी ब्रिंग्स दैट क्वाइट लिव्ड इन परफॉर्मेंस दैट ही इज सो वेल नोन फॉर, राइट? और ये एक बंदा ऐसा है जो कंफ्यूजन, गिल्ट और टेंडरनेस को भी ही कैन मेक इट फील वेरी रियल विदाउट ऑल द शाउटिंग. वेदिका पिंटो गेट्स नोटिस्ड एज सुधा, फ्री स्पिरिटेड वुमन शी प्लेज हु लीव्स अ मार्क. महिमा मकवाना इसमें है, शी ब्रिंग्स अ वेरी यू नो काम प्रेजेंस एंड सैनिटी एज प्रीति. मसूरी की सेटिंग इज

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बता दूं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is the Big Binge only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: morning sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. Come on here.
1: Big 106.2 but this is the Big Binge. We've been talking about Musafir Cafe Netflix ka wo show starring Vikrant Massi that everybody is talking about. But bahut confusion hai ki whether you should stream it or skip it. I'm going to try and make things a bit simpler and save some of your time, right? So we spoke about the really good things about Musafir Cafe. And now it is time for the not so good things. Dekho, let me just be upfront and blunt. Pehla episode aap dekhoge na, 90% chances that you'll say, kar yaar bhai, कुछ हुआ ही नहीं इसमें, तो बस कुछ हुआ ही नहीं. वी जस्ट सॉ बिट ऑफ मसूरी, थोड़ा सा भोपाल, एंड दैट्स अबाउट इट. मतलब यार, अ शो कैन बी जेंटल बट दिस इज मे बी अ बिट टू जेंटल. पेस इज स्लो एंड कभी कभी ऐसा लगता है ना कुछ शोज को देख करके, यार ये 8 एपिसोड क्यों बनाए. इट कुड हैव बीन अ टाइटर फिल्म. थोड़ा सा मेहनत करके, क्रंच करके अच्छी खासी फिल्म बन सकती थी इस टॉपिक पर. ऐसी फीलिंग अगर आपको आए तो मुझे याद करना. इट्स एन 8 एपिसोड सीरीज एंड द राइटिंग ऑल्सो इज प्लेइंग इट अ बिट सेफ. मतलब लव ट्राइंगल कितने मैसी होते हैं, मसी नहीं मैसी होते हैं. एंड दिस वॉज लाइक क्वाइट अ सेफ बिनाइन काइंड ऑफ अ थिंग. कुड बी मच शार्पर, राइट? एंड फेमिलियर ट्रोप्स आपको दिखेंगे. माउंटेन कैफे ड्रीम, वो प्यार, ओह दैट कुड हैव बीन. अगर वो मेरी जिंदगी में होती तो मैं वैसा वाला जो ऑलरेडी डन टू डेथ हो गया है, ये सब के बारे में बात होगी. द वन दैट गॉट अवे, इमोशनली कंफ्यूज्ड मैन. व्हाई डज द मैन ऑलवेज हैव टू बी कंफ्यूज्ड, कैन यू प्लीज टेल मी? एंड सो इफ यू वॉच अ लॉट ऑफ मॉडर्न हिंदी रिलेशनशिप ड्रामास, दिस माइट फील स्लाइटली प्रेडिक्टेबल. क्योंकि दिल तो है, इट्स गॉट अ हार्ट, बट यू माइट फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू फाइंड अ हार्ट बीट इन दिस. यू नो, इफ यू कंपेयर इट टू कॉफी, हाँ कॉफी में क्या होता है कि कभी कभी ब्रू तो अच्छी हो जाती है बट देन पीने के बाद लगता है कि यार ये थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग होती ना तो ज्यादा मजा आता. ऐसी फीलिंग आपको मुसाफिर कैफे के साथ आ सकती है. दीज आर द नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट मुसाफिर कैफे. और हाँ, यू हैव टू वेट टिल एपिसोड 7 टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये सारा कुछ जो माजरा था ये एक्चुअली क्या था. एपिसोड 7 आउट ऑफ 8 एपिसोड्स, दैट्स लीविंग इट अ बिट टू लेट. सो कमिंग अप नेक्स्ट, बताओ भाई सिड, देखें कि नहीं देखें? दैट वर्डिक्ट, स्ट्रीम इट और स्किप इट, कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग बिंच.

बिग 106.2 पर. दिस इज द बिग बिंज. नेटफ्लिक्स का मुसाफिर कैफे. अब इट्स द मोमेंट ऑफ रेकनिंग. इट्स नाउ टाइम फॉर मी टू रिवील वेदर यू शुड स्ट्रीम इट और स्किप इट. मुसाफिर कैफे, आईड से स्ट्रीम इट ओनली इफ यू आर इन द राइट मूड. क्या होता है ना कि कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि आपको एक इत्मीनान आराम वाला शो चाहिए. ऑलमोस्ट लाइक ठंड के टाइम पे एक रजाई टाइप का एक शो जिसमें ज्यादा बूमा बाम ना हो. राइट, इफ यू एक्सपेक्टिंग अ फास्ट थ्रिलर, बिग ड्रामा, कॉन्स्टेंट क्लिफहैंगर्स, तो भाई छोड़ दो, ये वो शो नहीं है. अगर आपको कुछ स्लो, इमोशनल, रोमांटिक, रिफ्लेक्टिव चाहिए, मतलब एक क्वाइट वीकेंड चाहिए. बहुत तमाशे हो गए यार, मतलब बॉस की सुन सुन के परेशान हो गया हूँ. नाउ आई नीड सम मी टाइम. चाय, रेन वीडियोज फ्रॉम इंडिया, फैमिली ग्रुप, इफ यू यू नो इन टू ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स, देन यू माइट लाइक दिस शो. हाँ, थोड़ा नॉस्टैल्जिया टाइप का ये शो भी है. विक्रांत मसी, इफ यू आर बिग फैन ऑफ विक्रांत मसी, देन यू कैनॉट मिस दिस शो, बिकॉज वॉच इट फॉर द परफॉर्मेंसेज, दे आर क्वाइट गुड. अगर आप मसूरी कभी नहीं गए हैं, भोपाल कभी नहीं गए हैं, तो डेफिनेटली यू माइट लाइक इन्जॉय द सेटिंग एज वेल. एंड या स्किप इट अगर आपको कुछ शार्प, फास्ट, अनप्रेडिक्टेबल या ट्रूली बिंज वर्थी चाहिए. ये वो शो है कि ऑफिस में थोड़ा टेंशन बढ़ गया ना, तो एक आधे एपिसोड देख लिया, चलते फिरते एपिसोड आप देख सकते हो. इट्स दैट काइंड ऑफ अ शो. एंड या सो इट्स अ सॉफ्ट वीकेंड वॉच, नॉट अ नॉकआउट. इज दैट वार्म कप ऑफ कॉफी विद अ फ्यू बिटर नोट्स. Sit getting poetic. आप बताइए अगर आपने ये शो देखा है, what do you feel about it? You can always send me a WhatsApp 054-309-1062. This is the Big Binge with me, Sid.

Big 106.2, The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood.